0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आइस त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई। दुःखमा थिए आमै।
1: ए, आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख कै कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस्तार गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-6670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।